0: शब रोज
1: गश्तम तरहवा
0: कर दे
1: बनी खया
0: गाहे न देखी कर करदम मम
1: बट भक्त हम चौ बकील दाविल

संसार ते आके प्यार ही वंडिया है, पर संसार ने सदा ही रब दे प्यारियां नू दुख ही वंडिया है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हंकारी पंडिया ने जदों देश परदेशा विच जाके हुक्मनामे भेज दिते, भाई बड़ा यज्ञ कर रहा है कबीर, ता अकाल पुरख वाहिगुरु आप आके फिर सारिया नू भोजन छकाया, अपने भगत की रख्या की, अज भी रख्या कर रहे। कबीर जी कहंदे ने जदों सानू जंजीरां विच जकड़ के गंगा दी लहर विच दबो दिता गया, फिर सानू डर नहीं लग्या, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु अंग संग है, फिर डर कादा भाई। ना ओए मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम है, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ।

मन ये किसे काम नहीं आने, इसलिए अवर काज तेरा कित ना काम, मिल साथ संगत।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल।

उसने इस शरीर नूं सुंघिया ते वापस चला गया। क्योंकि कई दिनों तो भुखा सी बुग्याड फिर आया, हाथ सुंगे, मस्तक सुंगया, पैर सुंगे ते फिर वापस तुर गया। कीर्तन की समाप्ति हुई, धन गुरु नानक पातशाह बिरती तो उथान होए, मर्दाने ने बेनती की, गरीब नवाज सच्चे पातशाह आ मृतक शरीर पिया है, बाघ ने पहला आके इस नूं सुंघिया चला गया, फिर इसका मस्तक सुंघिया, हाथ सुंघे, कदम सुंघे, फिर वापस चला गया। जापदा सी कई दिनों तो भुखा है, पर उसने अपनी खुराक वेख के इस नूं भक्षण क्यों नहीं कीता? धन गुरु नानक पातशाह कहणगे, मरदानिया आ कीर्तन दी रब्बी बाणी दी आवाज इसके कन्ना तक पहुंची है और इसका मन निर्मल हो गया, हिरदा स्वच्छ हो गया। इसने जिस मृतक शरीर नूं सुंघिया ना, इसलिए सुंघिया कि इसने कोई चंगा कर्म भी किया लेकिन कोई नहीं किया। फिर मन में आया, हो सकता है कदे अपने गुरु अगे इसने शीश निवाया होवे, शीश सुंघिया हो सकता है, इसने कदी सेवा करके अपने हाथ सफल किते हो सकता है कदी इसके कदम सतगुरां वल गए हो, गुरु वल गए हो, पर मर्दानिया इसके कदम सदा माड़े पासे जांदे ने, इसके हाथ सेवा तो बिना इसका मस्तक कदे गुरु दे चरणा ते नहीं चुकिया, जिस करके बग्याड़ नूं ज्ञान हो गया कि जे मैं इस पुरुष का मास खा लिया तो मैं भी कुंभी नरक का भागी बन जावांगा। सो प्यारी सात संगत, मनुष्या जन्म उन्हां दा ही सफल है जिन्हां ने भाई सेवा और सिमरन करके अपना

सुख प्रजा दी सेवा करके भुखे नूं भोजन देना, लोड़ अनुसार कपड़ा लीड़ा गरीबां नूं देना, उन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करनियां। जे ए सारा धन तू नाल ले जाना चाहुंदा है ना, तां संसार विच जितने भी गरीब गुरबा है सब

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन नु कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नु आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमान।

ते मैनू नवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां, कि कृपा कर मैनू अपना।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

0: उमलू राफ का उफ काफला है, मगर एक ही बात में फैसला है।
1: कहने लगी ओ केड़ी गल है?
0: महा आत्मा कोई हो जाए कुर्बान, महा आत्मा कोई हो जाए कुर्बान, तो भारत की

करोड़ा वेगा गंगा ते इशनान कर लो। एडा फल प्राप्त होंदा है भाई महापुरखां दे जपन वालियां दी चरण धूड़ी प्राप्त हो जा ते गुरु दे चरणा दी धूड़ी भी उन्हां नूं नसीब होंदी है जो जपन वालियां दे चरणा दी धूड़ी मस्तक ते लाउंदे।

सब सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सब रजमी दिस आई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह जरजोई कर दे, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा दा, जित द्वार है उपरे तिता ले बार, जिमें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सर्दियां नूं जिमें शांति दे सकना मेरे साहिब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा जोड़दा, साहिब टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इन्ना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप भी सुखी होवे ते आले दुआले नूं भी सुख बने। इत्थे भी कहिंदे ना, आप ही सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निध नाम, नाम वो खजाना है जिस सारे सुख ने, ते जिन्हां ने इस सुख नूं प्राप्त करने का यतन किया है उन्होंने जो कितने किनका मात्र भी इसका सची मुची प्राप्त हो गया, थोड़ा जहा भी उन्होंने रस आ गया। साहब कहते हैं मैं उनकी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शे है, आप संकल्प करिए, मन में एक इच्छा करिए, आशा करिए, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, काल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन विच शरीर विच वरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जिहड़ा विश्व दा मालक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उसनू याद करा, उसनू चेते करा, उसनू जपा, जिसनू अगे भी बड़े याद करदे। नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करते हैं।

0: अंतना पावत देव सबे मुनि इंद्र महाशिव जो करी तेरा अंत न पारा वारिया
1: पावत देव सबे मुनि इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत देव सबे